सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक देव जीओ महाराज। नमस्कार गुरुदेव को। सतनाम जिन मंत्र सुनाया, पवजल विचों कढ़ के मुक्त

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधार।

का कर चवर टलावा, चरण तूड़ मुख लाई। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की सरना। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। संत सहाई जीव के पव जल तारन हार, सब ते ऊचे जानिए नानक नाम प्यार। संत सरन जो जर परै, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका, बहर बहर अवतार। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक विनवंता, साध जना की अचरज कथा।

0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मारता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करदे हन। असी लोग ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़ियां होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच परम दे भटकदे फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतदे फिरदे हां। अनेकां तरां दे दुखां सुखां दे विच फसे होए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए होए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेड़े परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए और सारे कर्मां बंधना तो रहत हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन शिवजी।

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हां नूं देवत्यां दे विच सर्वोत्तम मन्ने गए हन। जा रहे हन किसे जंगल दे रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करदे हन, मत्था टेक रहे हन, धूड़ चक चक के मत्थे नाल ला रहे हन, धन धन कर रहे हन, धरती ते नमस्कार करदे हन बारंबार, जिन्हां नूं लोक नमस्कार करदे हन। पार्वती पुछदी है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किसनू नमस्कार करदे हो, तुसी किसनू मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो? भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने तपस्या कीती है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इह धरती दा कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती दी इह समर्था है कि पवित्रता बख्श सकदी है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषां दा जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साडे लोगां वास्ते। भावें संसारक तौर ते महापुरुषां दे जीवन नूं कोई सास मुस दा कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असी अपनी बोली दे विच ओह विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरुष जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने सात संगत जिन्हां दे नाम तों सारे लोग जानते हैं, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान सात संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह सात संगत संत बाबा नंद सिंह तों उपरंत ते सात संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं सात संगत सुणाउंदे हुंदे हन। पटियाले वाले भाई वीर सिंह जी सात संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे ओह डेरे दे विच होके जांदे, मिलके जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਸ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ।

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भगती की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हां दे पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चां दे जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी सिक्ख्या दे के बाबा जस्सा सिंह जी दे जीवन नूं ए सी गुरमुख दी कठाली।

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज ना गलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरु। इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतिया। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजा का त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोगों ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इसनू घरों तकिया गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई उसनू भी कई लोग लानता पाउन लग गए घर वाले नू भी दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्होंने कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सास संगत ऐसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुर्दा होए मरीज ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुर पीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरु। सास संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़िया दे पौन ते सुट देंदे सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सत्संग गलेल दे विच सत्संगत पा के गोले चलाउंदे, सत्संग बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सत्संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सत्संग तुफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी कहड़े ਘਾੜਤ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮ।

गुरु की बाणी ते भरोसा होवे, सिदक होवे, प्यार होवे, तां लोक परलोक दे सुख बख्शदी है। जे श्रद्धा ना होवे तां कई वेरां गुरु की गोद विच बह के ही मनुख खाली उठ जाता है। नानक हुक्म ना मने सो घर ही बैठिया दूर, महाराज बख्शिश करदे हन गुरु ग्रंथ साहिब। जे हुक्म नहीं मनदे, नानक लेखा एक गल होर होमै, वो एक गल केड़ी है, अमृत वेले जाग के इशनान करके अपने मालक दा सिमरन करना, जपना श्री। महाराजा प्रताप सिंह जम्मू दे राजा, भगंदर दा फोड़ा निकल आया जेड़ा हड्डियां नूं भी सुराख कर जांदा, एडा भयानक फोड़ा। सारे डॉक्टर हकीम जितने भी सन सब जवाब दे, ते राजे कोल एक दरोगा सी, ओ हर वेले सुखमनी साहब दा पाठ करदा हुंदा सी, ते राजे नूं बेनती करन लगा, महाराज जे हुक्म करो तो मैं बेनती करा, भई कदे गुरु नानक दे दर ते भी अरदास कीती है, कदे बाणी दा भी भरोसा ले सिदक, कदे बाणी दा भी आसरा लिया। आख्या सुभाग तां सुनिया, बड़ी उस्तत सुनिया, गुरु नानक दे दर तों कदे कोई खाली नहीं आउंदा।

इन्हां पंक्तियां विच उस परमेश्वर की वडियाई करदे होया उपदेश करदे हन। जौ गुरदेओ ता कंध नहीं हिरै, जौ गुरदेओ ता देहो राखिरै। गुरु दयाल होवे जे उसने रखना है ता कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किधरे कंध नहीं हिलती। किधरे जे गुरु दयाल हो जावे ते सारा देहरा ही सारा मंदिर ही ओ घुमा दिंदा। ए पवित्र शब्द ज्यों ज्यों नामा हरगुण उचरै भगत जनां को दे

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड एंड यू शैल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पेन एनी लॉन्गर। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। ही क्रिएट्स एंड अडॉर्न्स द अर्थन वेसल्स, ही इन्फ्यूजेस हिज लाइफ विद इन देम। जैसा लिखत लिखिया तुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। एज इज द डेस्टिनी प्री ऑर्डेन्ड बाय द क्रिएटर, सो आर द डीड्स वी डू। मन तन थाप किया सब अपना, ए हो आवन जाना। ही बिलीव्स द माइंड एंड बॉडी आर ऑल हिज ओन, दैट इज द कॉज ऑफ हिज कमिंग एंड गोइंग। जिन दिया सो चित ना आवे, मोहे अंत लपटाना। ही डज नॉट थिंक ऑफ द वन हु गेव दीज थिंग्स, ही इज ब्लाइंड एंटैंगल्ड इन इमोशनल अटैचमेंट्स। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपार। One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, Nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. Kirpa karo deen ke date, mera gun ab gun na vichare.

कमाल दियां गल्लां कहीं कमाल दे बचन कहे कथा कीर्तन मन नै लावे संत सिख को बुरा अलावे निंदा जुआ हिरे जो माल जो पंक्तियां तुसी सुनियां कई अजकल लाटरियां पाउंदे ने ए भी जुआ है आखिया निंदा जुआ हिरे जो माल महा दुखावे तिस को काल आ देख लो नाल नाल मन नूं तोलियो भाई किथे घट हां किथे पूरे हां पूरे होना है बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी दी सोजी नूं धारण करना है। एक होर बड़ी कमाल दी गल कही जी सिख एक होर काम करे

कोई अश्वमेद यज्ञ करे, अपने बराबर तोल के, अपने वजन दे बराबर तोल के सोना चांदी दान कर लवे, कोई प्राग दा इशनान कर लवे, पर परमात्मा दे नाम दे बराबर नहीं पहुंच सकते जब सतनाम।

मेरा नाम ले दी, तेरा काम हो जाएगा। इन्ना काम करी, मेरा नाम ही चलता है। मेरा नाम ले दी, तेरा काम हो जाएगा। पर ख्याल करो, जे एक संसार दे विच किसे वड्डे मनुख दा जेड़ा कुछ भी नहीं, जेड़ा कुछ मनुखां ते सिर्फ हुक्म कर सकदा है, जेड़ा कुछ भी नहीं, जिस दे कोल कुछ हो सकदा है, कुछ मनुखां नाल ज्यादा साधन होण, जे उसका नाम लैके काम हो सकदे ने, जेड़ा फिर वड्डिया तो वड्डा शहनशाह है कि उसका नाम लैके साडे काम नहीं हो सकदे। जब सतनाम श्री फिर उसका नाम लैके भी काम हो सकदे ने। नाम लेना, उसकी याद विच रहना, उसके नाम नू विसारना ना, उसके नाम नू हिरदे विच उकर लेना, ते धर्मराज नू कह देना, जिसने तैनू बिठाया मैं उसका बंदा। जब सतनाम श्री हो फिर तो धर्मराज दे भी अड़का नहीं लगना। जब सतनाम श्री वाहिगुरू, ते जदों धर्मराज नू भी पता लग गया ना, जिसने मैनू बिठाया ए उस मालिक दा बंदा है, उसका नाम लै रहा है, ते ओ भी अगो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, ते पता की बोलेगा, हो सेवक ठाकुर अविनाशी। जब सतनाम श्री, मैं तुहाडा सेवक, तुसी मेरे मालिक। इस करके कहिंदे नाम

ये जाएगा तन नाम अमोला, तन ते पाया होया चोला भी नाल नहीं जाना, छड़ जाएगा। ये जाएगा ए हर का चोला, देखो सतनाम श्री।

कोई प्रोफेसर सी उसकी प्रोफेसरी नु कोई नहीं खो सकया। जे अगर कोई अपने शरीर नु बचा के आ गया डॉक्टर दी डॉक्टरी नु कोई नहीं खो सकया। जे अगर कोई इंजीनियर अपने शरीर नु बचा के आ गया उसकी